प्रिय मैगर कविला हुक्र जय मसीह और नमस्कार। मैं अपना हुकन के सामु फे महात्मा प्रसाद चौधरी आगे लाटू। आज हमारा परमेश्वर का ना शीर्षक मा वचन हेरा जाय थी जी हाँ हमारा दोसरो खंड के रूप में लीला बाटी। कविला हुक्र मई समय परमेश्वर के बारे में बात बटोई थी बाटू और आज वह विषय है अपने हुकन के बीच में फेसबुक लेकर आये बात। आशा बात सब जना ये वचन है सुनती बाटी। वह परमेश्वर हुईता जे हमन वहां धर्म शास्त्र डेला। वह परमेश्वर है आज विश्वासी हुक्र आराधना करता मंडली में उनाव है येशु कै का कहत जुन चाहे त्रिएक परमेश्वर का दोसरो व्यक्तित्व हुईता। त्रिएक परमेश्वर चाहे सत्य परमेश्वर हुईता एकर अर्थ चाहे तीन परमेश्वर का लक नहीं हो ई चाहे झूठा शिक्षा को करता। तर एक परमेश्वर जे अपना है तीन व्यक्तित्व में प्रकट करेला। वहाँ पिता हुईता जे सारा चालक रचयिता हुईता और हरेक चालक सुरक्षा करता। वहाँ छावा येशु ख्रीस्त हुईता जे अपन स्वर्गीय सिंहासन छोड़ला वही संसार में मानव चोला लेकर आईला जे कन्या कोख से जन्म लेला। वहाँ मानव चोला लेला और वह समय में वहाँ सत्य परमेश्वर रहा जे क्रूस ममूला और बौरी उठला ओ स्वर्ग में गईला। वहाँ फेसो की संसार में ही प्रतिज्ञा करला जी हाँ न्याय दीन कई का कथा। वहाँ परमेश्वर का छावा सत्य परमेश्वर हुईता वहाँ पास पवित्र आत्मा हुईता त्रिएक कट्टो तेसरो व्यक्तित्व के रूप में पवित्र आत्मा है देखती जे मने हुकन परमेश्वर का वचन का विश्वास अंथा हुकन के हृदय में ओर से त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा चाहे सत्य परमेश्वर हुईता। कोई भी और झूठा परमेश्वर अपने स्वर्ग में ले जीना भरोसा और विश्वास दी गल से वो अपने है निराश पारी का करे की स्वर्ग में जीना डगर चाहे येशु के लिए खुईता और स्वर्ग में जायक लाग अपना पापक क्षमा अपना पाए पर था और येशु है बिना ग्रहण कैला अपना पापक क्षमा हुई नहीं सकी। जब अपना परमेश्वर का कृपा और वहाँ भलाई के बारे में बात बटोबी कल से और बटोई थी कल से वहाँ बात सब मने नक लाग दिहल बा वही चाहे हमारा क्रिश्चियन विश्वासी नक लाग दिहल और डेला उद्देश्य हो। यदि कोई विश्वासी हूँ कही का कहीं कल से वो परमेश्वर का वचन लेकर और मन और मन सुनैना जारी कहना जरूरी बा वो सुनैना और सुनाई जीना आवश्यक बा। इस बारे में यदि अपना ऐतिहासिक प्रतिवेदन हेदान से मन लगा के हेरबी कल से भेट भी आई रोमी 11 अध्याय हेरी जहाँ प्रेरित पावल मंडली है बहरना रुखक रूप में बटेला बाट हम विश्वासी बहरना जरूरी बा कहीं का पावल का था हमारा जिट्टी रह ख्वाजटी कल से हमारा बहरना आवश्यक बा। ई चाहे परमेश्वर का सिद्धांत हो जीवन रहना हरेक प्राणी रुखवा बरिखवा हरेक चाज बहत ई बात हमार सत्य विश्वास का संदर्भ में फैलागु ही था। यदि हमार विश्वास जातिक और जित्ती हो कल से वो बरहा पर था वो परिपक्व ही पर था परमेश्वर का वचन में बरहक लागे ठो प्रक्रिया है अपना लिया से भी ऊ चाहे प्रार्थना हो। जब अपना वहाँ वचन का प्रयोग कर भी पवित्र आत्मा अपना है सहायता कर रही आशीष दी अब हमारा रोमी 11 अध्याय है हेरी ई चाहे परमेश्वर का राज्य के बारे में बात बतवाई जी हाँ हमारा मंडली अथवा परमेश्वर का जन कई कथी जुन कलक पुराण करार अनुसार यहूदी जाति कलक ई चाहे हुकनक बारे में बात बटवाई जहाँ बताए कि परमेश्वर हुकनक लाग मुक्ति देला और हुकर ध्यान जन वहाँ इनकार करला विशेष कह का परमेश्वर हुकनक लाग मुक्ति दिहक लाग मुक्तिदाता हाँ पठैला तर ऊ मुक्तिदाता हाँ हुकर इनकार करला हुकर येशु में विश्वास नहीं करता हुकर जाकर प्रखाय में बाट वहाँ येशु हुई कई का हुकर नहीं स्वस्थ जहाँ बटाए रुखम सुखल हांगिया रहा जहाँ ऊ मरल हुकर उही से उही न रुख से छुटैला। रोमी 11 अध्याय बताए कि उस समय में यहूदा में ध्यार मने हुकर विश्वास नहीं करल रहा परमेश्वर के निराशपन का बारे में कोई भी विश्वास नहीं करल रहा वही बात पवित्र आत्मा शक्ति में प्रेरित पावल लिखता अब वो मौका गए यहूदी हुकन दे जाए पावल एकदम पूर्ण रूप में विश्वास कर रहा कि वहाँ है परमेश्वर अन्य जाति हुकन बीच में चौकाई कर बलैला और से पावल गैर यहूदी मने हुकन थे गैला वो कला उडार यहूदी मने नक लाग दिहल बारा तर अब उडार टुनक लाग फेव वहाँ सारा मने हुकन प्रेम करता कौनो वर्ग कौनो समूह के लिखना ही तर सारा मने हुकन परमेश्वर प्रेम करता वहाँ छावा येशु क्रूस ममूला ताकि हमार पाप क्षमा हो हमारा वहाँ में क्षमा दान पाए सकी ये सारा मने नक लाग क्रूस में कमा गैलक उपहार हो ई मौका फायदा जे वहाँ में विश्वास करी वह की लिख लिया पाए ई चाहे ओसिन जस्ता हो जुन उपहार में अपना नाव लिखल बा और जना आकर कहत कि ई तोहार लाग हो आओ लेकर जाओ वो अपना कली कि ई मोर लाग नहीं हो मैं नहीं ली हम और ऊ अवश्य अपना लाग तरह तरह अपना उही नहीं ले ली और नहीं पैली तरह ऊ अपना लाग रहा। यीशु
सारा मनेनक लाग मुला यामा कोनो शंकै नै हो। संसारमा रहल हरेक मनेनक लाग तर जे उहाँमा विश्वास गरी उहाँमा आई उहाँका पाप के लिए उहाँमा क्षमा हुई ओ अनन्त जीवन पाए ओहर से पवित्र आत्मा परमेश्वर उहाँ शक्ति हमारमा पठेला ताकि हाम्रो परिवर्तन हुई हमार जिद्दीपन है मूर्खापन है टूर से की हमार हृदयमा विश्वास आई से ताकि हमारा ई बाटा विश्वास कर सकी और परमेश्वर है धन्यवाद की अपना मुआर पाप से महीन दूर कराए लाग अपना अपन छाव येसु यहाँ पठेली हमारा वहां में विश्वास करना अर्थ चाहिए हमारा वहां में परिवर्तन हुई लखो ई चाहिए लौ जीवन लौ विश्वास और लौ जन्म हो परमेश्वर का वचन कसी का अन्य जाति नक माज माइल का बात हमारा बटोली रोमी 11 अध्याय में और याकर मतलब ई नहीं हो कि वहां यहूदी होकर परमेश्वर में विश्वास नहीं कर लगा फिर नहीं हो का कर की आज ढेर यहूदी मन होकर फिर परमेश्वर में विश्वास कर ला बाटा और येशु प्रभु यहाँ अपन व्यक्तिगत रूपमा वा मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्नबाट रोमी 11 अध्याय यसै एक बारेमा फेर बताइछ जुन ख्रीष्टका बारेमा भविष्यवाणी अपना क्रिसमसका समयमा किले सुनल हुई जहाँ ठुट्ठा मनसे निष्कल जीवनका बारेमा बताइलबा यी वचन म बताए कि यहाँ बचल का जुन शब्द बा ऊ बड़ा गहिर अर्थ दिहल बचल अर्थ चाहे जित्ती का ना बुझाए ओ आमिन उही से आईना आशा के बारे में बताए ये चाहे रोमी 11 अध्याय में ये बात हमारा बताई से थी कभी लाहू कर अपना जीवन पूर्ण रूप में बचल बा का नाम आशा के लगा ओ येशु के बारे में अपना सुनैला मने हुकर सुनला परमेश्वर का वचन हुकन अपना सुनैली कई कमई आशा कैला बाटो हुकनक लाग पवित्र आत्मा में प्रार्थना करी हुकनक लाग प्रार्थना करक लाग कही ताकि हुकरा येशु में परिवर्तन हुई ओ आपन जीवन में प्रभु येशु हां व्यक्तिगत रूप में चिन्ह सेकत ओ हुकरा जीवन में अनंत जीवन पही ओ हुकरा अनंत जीवन पहली का बाटन हुकरा निश्चित हुई सेकत जब हुकरा निश्चित हुई अपना साक्षी कई को परमेश्वर का ख्रीष्ट येशु का देखायल डगर में न्यागती वहां के चेला हुई थी अनि उस समाचार कर्म काम अपना जिम्मेवारी अपना अभिभार आज एक मंडली है परमेश्वर देला बाटा आज की वचन द्वारा परमेश्वर अपना हथियार आशीष दिया आमीन।

0: कगरीमा गेल फुले भक्रीमा भाग्से ठिक्कमै बेघुन बुढी अठा भाग्से मारल बुढौवा लात भराक्से गिर्नु नाते मै झबाक्से
1: अरे जार वचल तप पैनु या।

0: मचै बो चन्नी गरिना होटल मे आइबो सहुने पटिना मुर्गी बोल्दै से मुन्की पिराइना तारो नै पिबो जिउ थसराइना
1: अरे क्यो त बताऊ यार इ मधुवन के जिन्दगी कैसी खोजिना।

0: मैं क्या कह रहा था, सुन
1: बेबी मुझको पता है तेरा मन है बड़ा, तभी फ्लोर पे तेरी वेट में हूँ खड़ा, ऐसे बैठे बैठे तू शोल्डर ना हिला, थोड़ा पैर उठा सानू नच के वगा।